आपे कर है सो होई। तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब साई का जानोई। आसा महला चौथा।

गया। पंक जो मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले मन। एक न चेत से मूल मनाओ, हर बिसरत तेरे गुण गलियां रहाओ।

बैन को आदि सुंदरी है, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवनत हूं, जो बरचा हो सो तुम थे पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सतर हमारी मारिया है। आप वाद मुझे अबरिया, मरण काल का त्रास न वरिया, जो सदा हमारी पछा, श्री अस तुझ जो कर हो रक्षा। राख ले हो महराखण हाड़ी, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तमहो पड़ी चातर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतराओ, काल पाए शिव जू अवतराओ, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का की आत्मासा। जमन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार हता हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैतो जचन उपजायो। आदि अंत एक अवतार रसोई, गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आपस बारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोहबत कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत है।

सुखी सुखी। एक एक की पीर पछानाए, घट घट की पढ़ पढ़ की जानाए, जब कर करा करता राव, प्रजा धरत तब देह पारा। जब या कर करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह धर सब हो। जिते बदन श्रेष्ठ सब धर, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नडाल, मऊ जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निलंब, आद अनीला नाद संभ। ताका मूड उचारन भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महा मूड कछ भेद न जानते। महादेव को कहत सदा सेवो, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध जीती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजाओ प्रथम संसारा। एक रूपा नू पसरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत भुज खान बाहर रच दीनी। कहो फूल राजा हो बैठा, कहो सिमट भय शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई ही अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप सुजियम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संघरो। दोट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दोट दुख तुह मरे। पुरख जन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट न है।

रद सद कर्म सब होई, जोड़ छां छब सकै न कोई। एक बार जंत मन संभाराओ, काल पास ते ताहिं बाराओ। जन नर नाम तिहारो कहाओ, दर्द दुर दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छा करता। श्री अस्तो जो जपै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछित तो फल पावै सोई, दुख नत सहबे आपत कोई अड़ैल। सुनै गोंग जो जाहि सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट नाम, तिन नर के रहै हो। जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पुण जय, अर्ध सहस पुण तीन कह जय। भाद्रव सुदी अष्टमी बारा, तीरु सद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र उपख्याने, क्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत, मस्त सुमस्त आप जून दोहरा। दस जान कर दस पारू, की जा कृपा अपारू। आप हाथ दा राख मोहि मन क्रम बचन विचारू। चौपाई मैं न ग्रेसा प्रथम नामू, किशन बिशन कब मैं त्याऊ। कान सुने पहचान तिन सौ, लिव लागी मोरी पागेन सौ।

तोहि अपना जानू करू प्रतपारात्म साहि मैं किंकर थारा दास जान दहातु बारू हमरी सब बैरियन संघारू प्रथम तरू भगवत को त्यानाऊ बहुर करू कविता विदनाना

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मरवजिया वधाइया राग रतन परिवार प्रिया शब्द गावण आईया शब्द होता गा।

नानक देव साहब महाराज जी का सुंदर इतिहास लिखा है, उत्थे दूजे पातशाह नौ पातशाहियों का भी लिख हो इस तरह छंदाबंदी। उत्थे फिर आप जी ने रह के कैंथल श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ लिखा, दूजा ग्रंथ तो बाद जो बहुत वड्डी महान देन है जिहदा सानी कोई नहीं है अज तक। सो इउं साध संगत जी, ये श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ आप जी ने बूढ़िया रह के दो साल सन 1821 तो 1823 तक ये महान घालना घाल करके लिखे है। पहला मंगला चरण है, 15 मंगल ने जिमें प्रारंभ कर रहे ने मंगल तो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक है अकाल पुरख अदुती ब्रह्म है। पहला ये मंगल आप जी ने रखिया गुरबाणी का, छोटा मंगल है जो बीज मंत्र है बीज रूप। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक है अदुती ब्रह्म है ओंकार सारे प्रका सारे पसारे नू प्रकाशन वाला है। ये ओंकार की धुनि तो ही सारा ये प्रकाशमान होया जो दिसदा संसार है कुदरत है। सतगुर प्रसाद, सतगुरां की हो जाए कृपा प्रसाद बख्शिश तो वह ज्ञान हो जाता ब्रह्म का। श्री गुरु नानक प्रकाश ना रखिया श्री श्रोमणी गुरु सच्चे पातशाह अग्ञान के हनेरे नू मेट के ज्ञान का प्रकाश देने वाले श्री गुरु नानक देव जी जी किवें उन्हां दा प्रकाश होया किवें प्रगट होए भाव सतगुरु नानक देव साहब जी का प्रगट होना जिदे विच सारी जन्म साखी बयान की आदि तो लैके उन्हां दे अंत संपूर्ण जीवन की कथा है। अध्याय पहला अध्याय पूर्व बारद आप जी ने दो हिस्से ग्रंथ दे कीते ने। पहला पूर्व बारद पहला अद्धा हिस्सा आर्द पूर्व बारद पूर्व पहला आर्द अद्धा पहला अद्धा हिस्सा उहदा नाम पूर्व बारद है ते दूजा उतरार्द है। दूजा मगरला हिस्सा जिहड़ा उहदा नाम उतरार्द दिता है। मगरला अद्धा हिस्सा पिछला अद्धा हिस्सा। सो इस तरीके दे नाल आप जी ने पहले पूर्व बारद अध्याय विच 73 अध्याय लिखे ने ते दूजे विच 57 अध्याय ने। 9700 बांदे दे आप जी ने 20 प्रकार दे छंद छंदाबंदी विच कविता विच सोहना इतिहास लिखिया है। आप जी यों पहला पूर्व बारद दा पहला अध्याय इत्थों शुरू करदे ने। नाम दी महिमा पहला कीती, मंगला चरण है, मंगल लिखिया दोहरा एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह विघन विनाशन सोए। कई नुस्खियां विच फतेह है भी है पाठ जां फतह है खाहा नाल है पर इत्थे नहीं। सो इस तरीके नाल आप जी पहला मंगल लिखते हैं। मंगल तो भाव हुंदा जास करना, तो मंगल जेड़ा हुंदा अपने सच्चे पातशाह जी दे अगे बेनती करनी भी जेड़ा भी कार्य करन लगे हैं सच्चे पातशाह वो निर्विघन चढ़दी कला विच संपूर्ण हो जाए, उहदे विच कोई विघन रुकावट ना पवे। ये अरदास हुंदी है कार्य दी चढ़दी कला वास्ते, विघना का नाश करन वास्ते जो मंगल कीता जांदा है। वाहिगुरु दे अगे प्रार्थना हुंदी है, उहदा जस हुंदा है, उहदे गुण कथन कीत करके वडियाई करके ते जाचना कीती जांदी जिहदे विच सच्चे पातशाह कृपा करे। अरदास उहनूं मंगल कहा है। सो आप जी पहला सब तो मंगल लिखदे ने। सब तो पहला ही मंगल अकाल पुरख नाम की महिमा का है। भावें यह मंगल बहुत डूंगा है, दोहरा एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। एकंकारा कक्के नूं औंकड़ भी उत्ते टिप्पी है, एक ओंकार जिहड़ा आपां पढ़दे हैं जिवें पहला पढ़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एकंकारा का भाव उ है एक ओंकार, इको एक अकाल पुरख एक ओंकार आ उ सच्चे पातशाह। सो सच स्वरूप आ एक आ ते सतगुरु एकंकारा सतगुरु जो एक ओंकार है निर्गुण ब्रह्म आ उहो ही सतगुरु है।
सच्चा गुरु है, सतगुरु का रूप भी उ आप जी ने अथाह श्रद्धा रखी। पहले मंगल विच ही निर्गुण ते सरगुण दोवां स्वरूपां दा मंगल कीता, कथन कीते अकाल पुरख दे दोवां स्वरूपां दा कथन कीता है, ते सतगुरु दी वडियाई भी कीती है। गुरु नानक देव साहिब महाराज जी सतगुरु दे रूप विच प्रगट होए। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण हुआ, भाई गुरदास साहब जी ने बयान कीता सतगुरु ने आप जी। सो गुरु अर्जन देव साहब जी भी बख्शिश करते ने, मेरा सतगुर रखवाला हुआ धार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया हर गोविंद नवा निरुआ। सतगुरु नानक देव साहब जी ने आप रखिया कीती है साहबजादा हर गोबिंद साहब जी। सतगुरु एक अंकारा, सतगुरु जो एको अंकार निर्गुण ब्रह्म है वो ही सतगुरु है। उस ब्रह्म ने ही सतगुरु का रूप धारण करके आना किया, प्रगट होना किया। तो जेड़ा एको अंकार निर्गुण ब्रह्म तो सरगुण स्वरूप सतगुरु है वो भी सर्वकला समर्थ है। तो यह प्रसाद सच होए वो सतगुरु की प्रसाद कृपा हो होंदी है, जदों बख्शिश हो जाती है तो सच होए परत के एक अंकार आ जेड़ा एको अंकार है वह सच की प्राप्ति हो जाती। वो सतगुरु का सतगुरु के राही वो सच स्वरूप वाहिगुरु का ज्ञान हो जाता है। क्यों दोवें सतगुरु तो एको अंकार ब्रह्म निरंकार ते आकार स्वरूप सतगुरु दोवें एक ने, दोवें आपस में ओत पोत ने, ताने पोट सो ताना पेटा जिमें हुंदा है सूत एको ही हुंदा है। सो प्रसाद सच उन्हां सतगुरु की कृपा द्वारा ही वह सच स्वरूप वाहिगुरु एको अंकार का ज्ञान हुंदा है। क्यों आप जी रला के मंगले लिख रहे हैं वाहिगुरु जी की फतेह विघन विनाशन सोए। वो वाहिगुरु जी की फतेह जित है, वाहिगुरु अकाल पुरख सच होए जी की प्राप्ति। दूजा वाहिगुरु जो निर्गुण स्वरूप है, वाहिगुरु जी की फतेह उस वाहिगुरु अकाल पुरख की फतेह है, हमेशा ही जित है। फतेह फारसी का शब्द है भाव जित, जिहदी कदे भी हार नहीं है, उहदी हमेशा ही जित है। वाहिगुरु जी की फतेह विघन विनाशन सोए। जेड़ा सर्वकला समर्थ है, आजाद है, जो चाहे सो कर देवे, ते ओ वाहिगुरु की हमेशा जित आत। उहदा फिर ओट आसरा लैण नाल कोई विघन नहीं लगता। विघन विनाशन सोए जेड़ा है ही सर्वकला समर्थ है। जेड़ा कमजोर हुंदा है उस तो बली बंदा कमजोर दे कम्मां विच विघन पाउंदा है, रुकावटां पाउंदा। विघन दा अर्थ है रुकावट पाउणी, कम रोक देना। सो विघन विनाशन सोए आप जी फरमान कर रहे ने कि वाहिगुरु जेड़ा अकाल पुरख आ उहदी जित आ हमेशा ही। जिहदी जित आ ते विघना दा नाशक भी उही है, उहदे अगे फिर कौन विघन पा सकदा है? कोई भी विघन नहीं पा सकता, कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकता है। यही महाराज जी ने बाणी विच कहा सी, विघन बिनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दे रड़ाया खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी। वाहिगुरु जी की फतेह विघन बिनाशन सोए। आप जी फरमान करें वो वाहिगुरु जी की सदा ही फतेह है, ते सारे विघना नू वो नाश करन वाला है। क्यों आप जी ने मनौत कीती है? फिर कमाल ये है भी अपने कोलों कविता विच्चों आपदा मंगल बना के कोई, पहला मंगल आप जी ने आपदा नहीं रखिया है, जो सतगुरां ने बाणी विच एको अंकार सतगुर प्रसाद शब्द वरते ने, जां श्री दसम ग्रंथ की बाणी विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एको अंकार सतगुर प्रसाद भी वरत्या है, एको अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। सो ये मंगल आप जी ने वरत्या है। कवि भाई संतोख सिंह साहब जी, क्योंकि वह पाशक ने सतगुरु नानक देव साहब जी तो लैके दस पातशाहियां दे, आप जी ने इस मंगल विच दोवां मंगलों निरूपण करके कमाल कर दिती।
अपने सतगुरां दे दोवें मंगल लै के बीज मंत्र गुरबाणी दा भी ते एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वाला भी प्लस करके इस छोटे जे दोहरे विच इउं दोवां मंगलों नूं एक करके आप जी ने मनौत की है। दोवां सतगुरां दे मंगल ही पहला रखे अपने इष्ट दे प्यारे सतगुरां दे, अपना कोई मंगल नहीं रखिया। ये आप जी की यथा श्रद्धा है, सिद्धक है सतगुरां दे उपर भी दोवें मंगल रला के आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का भी तो श्री दसम ग्रंथ जी का भी जिहड़ा आया दसम की बाणी विच आउंदा है। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पातशाही दसवीं जिवें आपां पढ़दे कभी बाच बेनती चौपे। सो उही मंगल दोवें कथन कीते ने रला के, पर आप जी ने साध संगत जी ये वस्तु निर्देश मंगल इहनू विद्वाना ने कहा है। मंगल तीन तरह के होंदे ने जिहड़े कवि जी करदे हन। आम पहला वस्तु निर्देश मंगल जिहदे विच निर्गुण ते सरगुण अकाल पुरख के दोहां सरूपां का कथन किया होवे, विचार दित्ती होवे, उहनू मनाया होवे, उहदा जस किया होवे। निर्गुण निरंकार ते सरगुण सतगुरु उहदा रूप है, प्रतख स्वरूप जो साकार है, जो दिसदा है, जो दुनिया नूं तारन वास्ते कायम हुंदा है। निरंकार तो आकार आप सच्चे पातशाह जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तुरकी बाणी वाहो वाहो निरंकार है। सो वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जीव डबर ना कोई, तुरकी बाणी है। सो इवें निर्गुण ते सरगुण दोवां स्वरूपां दा जी च कथन होवे वस्तु निर्देश मंगल हुंदा है। सो अखंड जिहड़ा सारे परिपूर्ण होवे अकाल पुरख किसे एक देश विच नहीं, एक देशी ना सारे देशां विच है, वस्तु निर्देश मंगल है। सो इस तरीके नाल जिहड़ा समय विच नहीं है किसे वस्तु दे नाल कटिया नहीं जांदा, विनाशी है, किसे एक देश विच ना होवे, सर्व व्यापक होवे, उहदा मंगल अकाल पुरख दा आप जी ने पहला मंगल किया है। तीन तरह के होंगे, हुण दूजा मंगल जिहड़ा होंदा आशीर्वाद आत्मक मंगल हुंदा है, तीजा नमस्कार आत्मक मंगल हुंदा है। सो इन्हां मंगलों का भी अगे वेरवा आवेगा। ये वस्तु निर्देश मंगल आ कवि जी ने किया है, दोहां ही निर्गुण ते सरगुण के दोवें स्वरूप कथन करके दोवें मंगल जो सतगुरु नानक देव साहब जी ने बाणी विच वरते ने ते दसम पिता जी ने अपनी बाणी विच श्री दसम ग्रंथ विच वरते ने, दोहां दा ही सांझा बयान करके दोहरे विच आप जी ने बहुत सुंदर मंगल पहला ही सतगुरां दे सामने सन्मुख रख्या है। यही कथा दे विच हर रोज गाउने हैं ਵੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ਆ, 14 मंगल होर करके फिर श्री गुरु नानक देव साहब जी दी आप जी ने सुंदर कथा किवें भाई बाला जी नूं गुरु अंगद देव साहब जी ने बुलाया ते फिर उन्होंने सारा इतिहास सुनाया। गुरु अंगद देव साहब जी ने सुन के जिवें जन्म साखी लिखवाई भाई पैड़े मोखे तो, वो सारा इतिहास आप जी ने इन बिन उस तरह सोहनी छंदाबंदी विच बयान किया। सतगुरु रहमत करन गरीब निवाज। सो इत्थे ही समें की समाप्ति है, विचार करदे हुई भुलां चुकां की माफ़ी बख्श, अगे तो सुमत बख्शनी जी।

0: बिन कुमरे अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे, गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन अगन कटह सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कब नन कह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा।

सह से अड़पा लख हो ही तक न चला नाल के सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल हुक्म रजाई चरणा नानक लिख्या नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कह जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लवड़ियाई हुक्म उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइया है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जी बुझै ता हूं मैं कहना कोई गावे को ताण हुए किसा ताण गावे को दात जाना निशान गावे को गुड़बड़े ही अचार गावे को विद्या विकम विचार गावे को साज करी तन खे ही गावे को जी लै फिर देही गावे को जा पैदिशा दूर गावे को विखा हद्रह दूर कथ न कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोटि कोट दिन दी लांदी थक पाही जुगा जुगंतर खाही खाही हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक साहिब प्रवाह साचा साहिब साच नाही पाखे आ पाव पा रखै मंगा देह देह दात करी दातार फिर के अगर के अज दिशा दरबार माह के बोलन बोली है जित सुमतरी प्यार अमृत वेड़ा सच ना उड़े आई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानकी वह जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाय कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवे यतन पाया मान नानक गावीए गुण निधान गावीए सुड़िए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर ना जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहे समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना खा नाही कह कथना जाय गुरा एक देही बुझाई सबरा जिया का एक दाता सो मैं विसरण जाई तीर्थ नावा जे भावा बिन पाणी के नहाय करी जे तीसर उपाय वेखा फिर कर्मा की मिला लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरण जाई जे बिचारे हर जा होर दसूनी होए नवा खंडारी जानी नाल चला सब कोई चंगा ना उरका एक जस कीरत जग ले जे तिस नत ना विता वातन पुछा के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस्त हे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आगुण दे ते हा गुण ना सुजाई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धड़ तबले आकाश सुनया दीप लोक पातालु सुनया पोहन सका कालु नानक भगत सदा विकास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंदौ सुनया मुक्साला हनुमंद सुनया जोग जुगत तन भेदौ सुनया इसास सिमरत वेदौ नानक भगत सदा विकास सुनया दुख पाप का नास सुनया सतसंतो ज्ञान सुनया अड़सठ का स्नान सुनया पड़ प्रताप मान सुनया लाग सह ध्यान नानक भगत सदा विकास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरगुणा की गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ वस गाह नानक भगत सदा विकास सुनया दुख पाप का नास मने की गात कही न जाय जी को कह पिछा पछताए कागद कलम न लिखण हार मने का बह करण विचार स नाम निरंजन होए जी को मन जाने मन कोई मन्ना सुरत हो मन बुद्ध मन्ना सगल भवन की सुध मन्ना मोहे चोटा न खाए मन्ना जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जी को मन जाने मन कोई मन्ना मार्ग ठाक न पाए मन्ना पासु प्रगट जाए मन्ना मग्न चला पंथ मन्ना धर्म सिद्धि संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जी को मन जाने मन कोई मन्ना पावे मुख द्वार मन्ना परवार साधार मन्ना तरह तारी गुरसिख मन्ना नानक पावे ना पेख ऐसा नाम निरंजन होए जी को मन जाने मन कोई पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे त्रिकहमान पंचे सोह दरा जान पंचा का गुरीक ध्यान जी को कह करा विचार करते कह करना ना ही समार ताउल धर्म दया का पूत संतोख था प्रक्या जिन सूत जी को बुझा हो अस्तियार तबला उपर कीता भार धरती होर पै होर तस्ते भारत लै कमजोर जिये जात रंगा के नाम सगला लिखिया बड़ी कलावे हो लिखा लिख जाना कोय लिखा लिखिया किता होए किता तान सवाले हो रूप के ती दात जाना कौन कूते कीता पसावे को कवाओ तिस्ते हो लाख दरिया कुदरत को कहा विचार वारे न जावा एक वार
ਕਰੂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੁਸਦਾ ਸਲਾਮ ਤ੍ਰਿਅੰਕਾਰ ਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਭਾਵ ਸੰਖ ਪੂਜਾ ਸੰਖ ਤਪਤਾ ਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਖ ਜੋ ਮਨ ਰਹਿ ਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੂ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮਹ ਪਕਸਰ ਅਸੰਖ ਮੌਲ ਵਿਲਾਇਤਾਰੂ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੂ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੁਸਦਾ ਸਲਾਮ ਤ੍ਰਿਅੰਕਾਰੂ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਮਰਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋ ਅਸੰਖ ਗੜਬੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜੇ ਅਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ਮਰ ਪੱਖਾਹੇ ਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰੂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰੂ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੁਸਦਾ ਸਲਾਮ ਤ੍ਰਿਅੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਭ ਅਸੰਖ ਥਾਭ ਅਗਮ ਅਗਮ ਸੰਖ ਲਉ ਅਸੰਖ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਕਰਾ ਸਰਤਯੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਸਿਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਪਰਮਾਇ ਤਿਨ ਤੇ ਪਾਹੀ ਜੀਤਾ ਕੀਤਾ ਤੀਤਾ ਨਾ ਉੜਨਾ ਵੈ ਨਾਹੀ ਕੁਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੂ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੁਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰੂ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉੱਤਰ ਸੁਖੇ ਹੇ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪਾ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ ਕਰ ਕਰਣਾ ਲਿਖਲਾ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਬ ਹੋ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਦਇਆ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵਤ ਕਾ ਮਾਣ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰ ਗਰਤੀ ਸਮਰਨਾਓ ਸਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਸਾਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਰ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੈਲ ਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਪ

मिलता है। नर नायक है खलकाय के विश्वंबर है करुणाल है नक नायक है सरपायक है पापंजन है अर्गंजन है ईरपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वा कृता कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा सर्व आत्म है आत्म वास है जस के जस है उपजन पर आछंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग तम संग सात रूपे नमो परम तत्व तत्व स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्री नमो ध्यान ध्यान नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान कारी नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्र नादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाली अनंगी कामे कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज पंज लख पख अकाल दयाल अलिख भिख अनाम अकाम अगाह टह नाथि परमाथि जोनी मोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे करम परम गंजे लेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्त प्रणामे समस्त प्रणासे अगंजन नामे समस्त निवासे निरकाम विभूते समस्त सूपे को कर्म प्रणासी सो धर्म विभूते सदा सचदानंद सतंग प्रणासी करी मुख निंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजाय विघ्नी में हरिम करी करिमल रही में चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं बहु शुभम सर्वदा सर्वजुगते

सदयंग संगी कपंगं विपुते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं प्रसाद सवैये श्रावक सद समूह सिद्धांत के दे प्रिय घर जोग जति के सूर सुरार्दन सद सुधाधक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे मत को न देख प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति मन एक रति के। माते मतांग जरे चर संग अनुपातांग सरंग सवारी कोटरांग कुरांग से पूजित पवन के गौर को जात निवारी। भारी पुजान की भूपली बेद न्यावशीष न जात बचारी। ते पाए तो कह पाए भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। जीतरा सब देश सन को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गुड़ गुजानक सुंदर ही सत ही हराज हजारे। भूत भगवान के भूपत कौन गण जात पचारे। श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत की धाम सुधारे। तीर्थ नान दया दमदान सो संजमन मनिक सिख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के बिखाए। पवन आहार जति जत हर सब सुब चार हजार देखा। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति मनेक नलेखा। सद्य सिपाह दुरंत बाह सुसासना दुर्जान दलांगी। भारी विमान पर मन मैंकर पर्वत पंख हले ना हलांगे। तोर अरीन मरोर मुआसन माते मतंगण मान मलांगे। श्री पात श्री भगवान कृपा बेनऊ त्याग जहान दान चलांगे। वीर उपार बड़े बिरे अबचार है सार की धर पछैया। तोर देश मलिंद मुआसन माते की जान के मान मलैया। गाड़ी गड़ान के तोड़ हार जो सो बात नहीं चक चार लवैया। साहब श्री सब को सर नायक जा चुका रे एक सो एक दवैया। दान देव फनिंदन सात भूत पे पांच जपाएंगे।

की बहु पुंज खपेंगे। साधु समु प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र विजेंद्र राज पौ जाऊन तरलोक राज करेंगे। कोट स्नान गजात गजार अनेक स्वंबर साध बरांगी। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचि पत अंत फसे जम फास परांगी।

काहू लखियो हर अवाती दिशा में है काहू पचाह कोशिश नवायो को भुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो को क्रिया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो को भुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो को क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबीर बात बेनती चौपाई। हमरी करुहा दरछा पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरणन मान रह हमारा अपना जान करो पारा। हमरे दुष्ट सबाय तुम का बहु आप हादम बचाव हो सुखी बसाए मोर परिवार सेवक सिख सबाय करतारा मोर अच्छा निज कर दाय कर सब अनुकवा संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अंगना त्याऊं जो मर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चौन चौन स्त्र हमारे मारिया है। आप हाथ मुझे अबर आये मरण काल का त्रास मर आये हूँ जो सुधा हमारे पच्छा श्री अस्त्र जो कर हो रक्षा। राख ले हो महराख नहारी साहिब सन साहिब प्यारी दीन बंदुष्टन के हंता। तुम हो परी चतुर दास कुंताऊ काल पाए ब्रह्मा बंतराऊ काल पाए शिवजी अवतराऊ काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मा सा।

उपजाए। आज अंतिक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सब प्रजा जी आप सुवारी शिव कर को सब गुण सुख दियो सतरंग को पल मोहम्मद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पिछाना कट कट के पढ़ पढ़ की जाना जावद का करा करतारा प्रजा तर तब देह पारा जबिया कर कर तुह कब हूँ तुम मिर देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सबता रहे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरा तुम जानत भेद भेद निरंकार निर्लंब आद अनिल अनाद सांभ।

मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अग मैं गोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया कने तेरा अपना आप तू जान है, जी जन सब केवल तेरा क्या को आको खाने।

सोर नार मुन जन अमृत खोई दे सो अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तो दो पाए एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार सूखा सदगुरु भला पाया कह नान दिसनु आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया

फिर मुक्त पाए लाग चरणी सदगुरु शब्द सुनाए कह नानक बेजार देखो उन सदगुरु मुक्त न पाए। आवो सतकार आवो सिख सदगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु के रे बाणिया सरबाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना कह कछ न जानी चित जिन कह हर लिया माया बोलन पे रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो आसवाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जनु देव जाए कह नानक शब्द रतन है ही।

सुख मनो विसारी है, जैसी अग्न उधर में तैसी बाहर माया। माया अग्न सब को जयी करता खेल रचाया, जंत सपाणा ता जमिया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तिसना माया, अमर वरताया ए माया। जतर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना, लिव लागी तिन विचे माया पाया। हर आपे मुलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै बटो रहे लोक लाए। ऐसा सतगुरु जी मिले तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप मुलक है भगत न के नानका जिनार पलै पाए। हर रास मेरे मन नजारा, हर रास मेरे मन नजारा। सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपियो जियो ला खड़ियो दिहाड़ी। ते तन तिन ना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह। नानक हर रास मेरे मन हो नजारा। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होर तकता जचर हर रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्ले पीए हर रस बोण तसना लागे आए। एहो हर रस करमी पाई सतगुर मिले जिस आए। कह नानक होर अनरस सब विसरै जा रस मन आए। ए शरीर मेरिया हर तू मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बूझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग मैं आया। मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाव सकी ग्रह मंदिर बनिया। हर गाव मंगल नित सकिए सोख दुख ना व्यापे। गुर चढ़न लागे दिन सुभागे अपना प्रजापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ये शरीरा मेरे आए जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन नो साया। गुर प्रसादी हर मनुष्या पूरक बिलख्या पाया। कै नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुर सिंह जित लाया।

जियो गुफा अंदर रख के वजा पौन जाया यो सचा सोला सचा कर गाव हो गाव ता सोला कर सचा जिथे सदा सच ते आवे हे सचो ते आवा जद पावे गुरमुख जना बुझावे यो सच सवना का खसम है जिस पक्षे सोजन पावे कह नानक सच सोला सचे कर गावे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपा उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे।

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया परपूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

लख पुनः प्रवाण लख तप प्रतीर्था सहजोग विवाण लख सुरतन संजराम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ी है पाठ पुराण जिन करता है करना।

ऐसा विवेक तू जिन्हें सचो सच बताया, जिस तू दे तिस मिले सचता तिन्नी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया, मूरख सच ना जाननी मनमुखी।

कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसनहार कुर सोना कुर रूपा कुर पहनहार कुर काया कुर कपड़ गुर पार कुर मिया कुर बीबी खाप हो खार कुर कूड़ा नहीं।

0: अब किस तेरा वास तेरा कर भला तेरे कार्यानंद वधाई तुझ कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जतकता नानक दासन दास तुदिया गए बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महत दिवस रात दुए दाई दाया खेलें सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे

नानक दे मुख उजले इसी छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

नानक ते मुख उजले इती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: बड़े बड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किच जान ला सब के तेरे वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाए तुद कर मार माता तेज अपना आप जार सर्व कला परपोर दिस जत कता नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगले जगत चंगियाया बुरियाया वाचे तर

0: गुरमुखरम गत पाये
1: गोट लख बाही
0: नाम जपत पार पराही
1: जाय संगार
0: हर का नाम तत्काल उधार।

0: ज्ञान मरग संजमत साधन
1: कर शरीर कटावे
0: अभी हमें मेल न जावे
1: हर के नाम संसार कस नाहे
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए
1: मन कामना तीत दे छुटाए
0: गुमान मन ते हुटाए।

0: गिरहत
1: भावित सलय लड़ लाई
0: कांतनंतर असमाए
1: सुसेवक जुग कृपा करी
0: निमक निमक

0: ठाकुर को रख मन माए।
1: जे प्रसाद सो गंध तन लावे है,
0: इसको सिमरत परम दत पावे।
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: इसे त्याय सदा मन अंदर।
1: जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पहर

0: मन मंत बनाई
1: उठत बैठत सती सेते आई
0: सेते आई जो ये का लग है
1: नानक करी रखे
0: ये प्रसाद का मैं पौन बादान
1: मन आठ पहर का

0: गौरी बबरा जी
1: ज्योतिष भाग सोई फुन थियो
0: ऊंच नीच में बस
1: प्रभु सो हर करंग से
0: प्रभु नंद चंद व्यवहार
1: प्रभु अकार

0: टूटे
1: गुर प्रसाद अनक हो छूटे
0: सहस कटे लख कोट तावे
1: इपनावे माया पाछे पावे
0: अंक भोग विख्या के करे
1: नै तिपतावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ बिरते सब काजे
0: नाम रंग सब सुख होए
1: बड़कागी किसे प्राप्त होए
0: तन को रावण अपे आप
1: सदा सदा

0: बोल है हर मुखी
1: सदा सदा जानो के सुखी
0: को एक एक पहचान
1: जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक तिने निरंजन जानिया
0: गुरु प्रसाद आपन आप सुजै
1: जिसकी जानो कृष्णा बुझे
0: साध संग हर हर

0: ऐसा सा तैसा दिष्टाया,
1: अपने कारण है आप समाया,
0: सोदत सोदत सोदत सीजया,
1: गुड प्रसाद तत सब बुझया,
0: जब देखो तब सब किस मूला,
1: नानक सो सुखम सोई अस्तूल,
0: नह किस जन्मे नह किस मरे,
1: आपन चेत आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
0: आते आप सरल में आप,
1: अनेक जुगत रस

0: का नेत्र फोर
1: इसका मंत्र न जाने होर
0: ध्रुव मंगल सद जाके
1: सर्व भोग सुनिए कथा के
0: राज में राज जोग मह जोगी
1: अपने तपे से ग्रस्त में होगी
0: त्याय त्याय भक्त है सुख पाया
1: नानक तिस पुरखा किने अंत न पाया
0: की लीला की मित ना है
1: सगल देव हारे अवगाए
0: का जन्म के जान है पूता
1: सगल परोई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे
1: जन दास नाम ते आवे से
0: यह गुण में जाको परमाए।

0: सुन श्रवण
1: कृपज अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: सत केवल प्रधान
1: सत सत जा की वाणी
0: सत पुरख सरणी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जाए तिसे सफली
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जपता की गत होए
1: आप सत

0: चरण सत सत परसनहार
1: पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पेखनहार
1: नाम सत सत ध्यानहार
0: सत सत सब धारी
1: आपे गुण कारी
0: शब्द सत सत प्रभु भक्ता
1: सुरत सत सत जप सुनाता
0: उज्जन हर को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभु सोए
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या
1: करन करावन जिन मूल पछानिया
0: जाके हृदय विश्वास प्रभु आया
1: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
0: कहते निर्भो होए बसाना
1: जिसते उपजा तिस माए समान।

0: न लगे
1: सबके सेवक को ना पहुँचे
0: सबके सेवक ऊँचे ऊँचे
1: जो अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दिस प्रगटाया
1: कीरी में कल रखे
0: पसंद करे लश्कर को लाखे
1: इसका सांस न काटत आप
0: आखो राखत देकर हाथ
1: मानस जतन करत वह पात
0: इसके करत बिरथे जात
1: मारे न रखे और न कोई
0: सर्व जिया का राखा सोए
1: माए सोच करे रे प्राणी
0: जब नानक प्रब अलख विडाणी
1: बारंबार बार प्रब जपिए
0: अमृते मन तंत्र प्रिय
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया।

0: के बंधन काटे
1: गुरु का सिख विकार ते हटे
0: सतगुरु सिख को नाम धन दे
1: गुरु का सिख बड़ पागी है
0: सतगुरु सिख का हलत पलत सवार
1: नानक सतगुरु सिख को जी ना संहार
0: गुरु के गृह सिख जो रहे
1: गुरु की आज्ञा मन में सहे
0: आपको कल कष्ट न जनावे
1: हर नाम हृदय सत्यावे।

0: मह जन जन्म है पार ब्रह्मा स्याण पलैण जाइया
1: नानक ऐसा गुरु वडपागी पाइया
0: सफल दर्शन पेखत पुनीता
1: चरण तत निर्मल रीत
0: संग राम गुण रवे
1: पार ब्रह्म की दरगह गवे
0: वचन कर आगाने
1: मन संतोख तंत ध्याने
0: पूरा गुरु आख्यो जा का मंत्र
1: अमृत देश पे खै वसंत
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे तिस लय मिलाए
0: देवा एक उस्तत अनेका

0: अवर उपास मीत बिसार हो
1: चरण कमल विद में उतारो
0: कर्ण कान सो प्रभु समराथ
1: कर गहो नाम हरवाथ
0: हो तन संचो हो वो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: आस राखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: इस तन को चार कुंट उठता आव है
1: सो तन हर सेवा ते पावे
0: को नित बाछे मीता
1: सो सुख साधु संग परीत
0: सो बागो करे भले करनी
1: सा सुबह पर

0: जप हो अवरा नाम जपाव हो
1: सुनत रहत रहत कत पाव हो
0: सार भूत सत हर को नाओ
1: सह सुभाय नानक गुण गाओ
0: गुण गाओ तेरी उतरस मैल
1: बिन जाय आमै दिख फैल
0: तोहे अचिंत बसे सुख नाल
1: सार रासर नाम संभाल
0: चार श्याम सगली मना
1: सा संग पावे सतना
0: अगुंजी सच करो विहार
1: सुख दर गय जयकार
0: सब निरंतर एको देखा
1: नानक जा।

0: अवतारी अपन सुन समाद
1: वैर विरोध के संग कमात
0: इसका बन चैन न जापत
1: किसे व्यापत
0: अपन आप पार ब्रह्म
1: किस होवत परम
0: खेल आप वरतीजा
1: नान करने हार ना दूजा
0: होवत प्रभु केवल तनी
1: बंद मुकत को किसको गनी
0: एक है हर अगम अपार।

0: आपन आसन
1: जन मरण को कहा विनाशन
0: पूर्ण करता प्रभ सोए
1: की त्रास कहो किस होए
0: अवगत अगोचर प्रभ एका
1: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेगा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे।

0: पसरे पासार संत परताप
1: पाख का आपे तनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आपे गौतव करे अंध चोय
0: आपे रस होगन मेरे जोग
1: पावे तिस

0: निर्दय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्वव्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी रत
0: सत वचन साधु सब कह
1: जो जो होए सोई सुख मन
0: धरम करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पी ओही
0: नानक दर्शन देख सब मोही।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधले को गुरे